दुख दारू सुख रोग पया जा सुखताम न हो। तू करता करना मैं ना ही जाहो करी न हो। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहो। जात मह जो जोत मह जाता कल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहब सिर्फ सवाल लियो जिन

आखण वाला क्या विचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू देहे तिस क्या चारा नानक साचो सवारण हारा आसा महला पहला

भाव। जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किस की तरया। सिर सिर रिजक संबाहे, ठाकुर काहे मन पौ करया। उडे उड आवै सै कोसा, किस पाछै बचरे शरया।

जो सेवा है तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह तुद जी से जान जुग मैं सुखवासी से मुकत पाए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन हर निरपाओ ते आया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत तेरे भगत सलाह।

तेरे अनेक पड़ है बहु सिमरत शाश्वत जी। कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी। जो पाव है मेरे हर भगवंता,

जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा तू करता सचियार, मैंडा साई जो तौ पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबने त्याया, जिसनो कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया।

जन्म पाया प्रणवत नानको तिन की सरणा जिन तू नाही विसरया। आशा महला पांजवां।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावह, आप हाथ दय मोहे बचावह। सुखी बस मोरो परिवारा, सेवक सेखो सबै करतारा। मोर रक्षा निज कर दय करिय, सब बैरन कौ आज संगरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा।

हाथ दय मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझु करहौ रक्षा राख लेहो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कार विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा

नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशानै, घट घट की पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निरलंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताकौ कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी श्रेष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारो असिख संगरो। दोष्ट जीते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण कहता। जी अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दोष्ट दुख तो हवा मरे।

हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा।

पौड़ी। जिथे तू समरथ जिथे कोई नाहे उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरे छड जाहे। पहु जल बिखम असगा हो गुर सबदी पार पाहे।

पहला तेतु की आसा मनसा बंधनी भाई कर्म धर्म बंध तारी पाप पुन जग जाया भाई बिनसै नाम विसारी एह जग एह माया जग मोहनी भाई कर्म सबे बेकारी। वाहिगुरु जी का खालसा।

साहिब जीओ सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै गुरुदेव मंत निरोतरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परसपरा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस करा। एहो श्लोक आदि अंत पढ़ना गौड़ी सुखनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आदि गुर ए नम है जुगाद गुर ए नम है सतगुर ए नम है सरी गुरुदेव ए नम है अष्टपदी। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कर कलेश तन माहि मिटावो

प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जमन सै, प्रभ कै सिमरन काल परहरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत काछ बिघ्न लागै, प्रभ कै सिमरन आंदन जागै।

ऊंचा प्रभु का सिमरन उदरे मुचा प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझे प्रभु का सिमरन सब किछ सुझे प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा प्रभु का सिमरन मन की मल जाए अमृत नामृत माहि सुमाई प्रभु जी बसह साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरै से धनवंते प्रभु को सिमरै से पदवंते प्रभु को सिमरै से जन प्रवान प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरै से बेमहताजे प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे प्रभु को सिमरै से सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी।

प्रभ को सिमरहतन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बेहावे, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरह तिन अंतक नीरे, प्रभ को सिमरह बसे हर नेरे।

सिमरन कबहु न चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह सुमानी, प्रभु कै सिमरन नह चले आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बेगासन, प्रभु कै सिमरन आनंद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांतना पार, सिमर है से जन जन को प्रभु आनंद जन सरनी पिया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेदो पाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन चौकुंड जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन क्यों सगला कारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया,

जय प्रसाद धर उपर सुख बस है सुत भरात मीत बनता संघस है। जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव का मूला। जय प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संसार बसा। दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना तिसे त्याग और संरचना ऐसे दुख मुड़ंद ब्यापे नानका लियो प्रव्यापे। आदि अंत जो राखन हार ते सो प्रीतन करे गवार। जा की सेवा नमद पावे ता सुमूड़ा माने लावे। जो ठाकर ससदा हजूरे ता को अंधा जानत दूरे। जा की टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुक्त अजान सदसदाय हो भूलन हार। नानक राखन हार अपार रतन त्या कौडी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छना सोआ।

पाछै पत जाए अष्टपदी, दस वस्तु ले पाछै पावे, एक वस्तकार विखोट गवावे, एक पीना दे दस पीहर ले, तो मुड़ा को का करे, जिस ठाकुर सोना ही चारा ताको कीजा सदनुस्कार।

राष्ट्रपति जय प्रसाद क्षति अमृत खाहे तिस ठाकुर गोरख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लाभ है तेसको सिमट परमगत पाव है जय प्रसाद बसे सुख मंदिर त्यासदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर समृत सरसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक दा ध्याय ध्यावन जोग जय प्रसाद पाठ कमर हटावे तिसे त्याग तबर लुभावे जय प्रसाद सुख से सुई जय मन आठ पैर ताका जस गावी जय जय प्रसाद तू सब को मान मुक्ता को जस रसन बखाने जय प्रसाद तुर रहता धर्म सदा ध्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जपत दर गए मान पावे नानक पद सीती घर जाव है जय प्रसाद रो कंचन देही लिवलाउ तिस राम स्नेही जय प्रसाद रोला रहत मन सुख पावे हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल सिदर ठाके मनसा ने पर ठाकुर प्रभु ताके जय प्रसाद तुझ को न पहुँचे मनसा सा स्मरु प्रभु चे जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहि नानक ताकि भगत करे जय प्रसाद आपूखन पैरी जय मन ते स्मृत क्यों आलस की जय जय प्रसाद असुभ हस्त सुवारी मंत्र प्रभु को कबू न बिसारी जय प्रसाद बाग मिल्क तना राख परोए प्रभु अपने मन जिन तेरी मन बंत बनाई उठ बैठ सत से त्याय तिसे त्याय जो एक अलख यहाँ उहा नान तेरी रख जय प्रसाद करहे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार व्योहारी तिस प्रभु को सास सास जितारी जय प्रसाद रसुंदर रूप सुप्रसमृसदानूप जय प्रसाद त्रिनी की जात सुप्रसमृसदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नाम जिसका है जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद पी कवि सुमाद जय प्रसाद बोले मित्र सना जय प्रसाद सुख से जी वसना जय प्रसाद हस कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परमगत पाव है जय प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रत्याग गुरु गत लागू हो।

श्लोक आगम आगाद पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए, सुन मिता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा अष्टपदी, साध कह संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रकट सुज्ञान, साध कह संग बुझे परम नेरा, साध संग सब होत नबेरा, साध कह संग पाए नाम रतन, साध संगे को प्रजतन, साध की महिमा वर्णे कौन प्राणी, नाम साध शुभ प्रमाय सुमानी, साध के संगे गोचर मिले, साध संग सदा पर भोले, साध संग आवे उस पंचा, साध संग मन रस पुंचा, साध संग होए सब की रेन, साध संग मनोहर बैन, साध के संग न कत हूं थावे, साध संग स्थित मन पावे, साध के संग

जाने परमानंदा। साध के संग नाही होताप, साध संत जस व्यापे जाने, साध बढ़ाई नान साध प्रभु बनियाई। साध संग न कबू थावे, साध संग सदा सुख पावे, साध संग बसै गोचर लहै, साधु के संग आजर सहै। साध के संग बसै थान ऊचै, साधु के संग महल पहुँचै, साध संग दृढ़ सब धर्म, साध संग केवल पार ब्रह्म। साधु के संग पाए नाम दान, नानक साधु के कुर्बान, साध संग सब खोल उदारे, साध संग साय मित्रम विस्तारे, साधु के संग सोधन पावे, जिस तंते सब को बरसावे। साध संग धर्म

कष्ट पदी ब्रह्म ज्ञानी स्थान लेप जैसे जल में कमला लेप ब्रह्म ज्ञानी स्थान दुख जैसे सुर सर्व को सुख ब्रह्म ज्ञानी का दृढ़ समान जैसे राय रंग को लागत फुल पवान ब्रह्म ज्ञानी क्या तीर जेक ज्यो बसुदा को खुदय को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी कह गुनाव नान जो पाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन में प्रकाश जैसे थर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र स्तर समान ब्रह्म ज्ञानी कह नहीं विमान ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जिन भय नानक जिन प्रभ आप करें

से ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जायाद आखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी के मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान ब्रह्म ज्ञानी कांत न पार नान ब्रह्म ज्ञानी कुशल नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टा करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुख जो जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक और तार है जो अंतर नाम सर मैं पेख है भगवान निम्क निम्क ठाकुर नमस्कार है नानक आपरा सगल निस्तार है आष्टपदी मिथ्या ना इसना पारसो मन में प्रीत रंजन दर्शो पर त्रै रूप न पेखा नेत्र साध क्या संसंग हित करुण न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आप सुको मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हर मन की बासना मन थे डराय इंद्री जित पंच दो रहत नान कोट मदे को ऐसा आपरस वैष्णु सोजे सुपर सुपर सन बिशन की माया ते हो भिन्न कर्म करत हो वैने कर्म तिस वैष्णु का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तने अंतर सिमन गोपाल सब प्रहोत कृपाल आप दृढ़ नाम जपावे नानक वैष्णु परमगत पावे भगौती भगवंत पद का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मनते विनसे सगला परम कर पूजा सगल

भगवान दिखा कर नीत मंत्र हर पै बिशन प्रीत हर के चन हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सोपन जो मन प्रभु दे राम नाम आत्मा सुध राम नाम सारस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद पुराण स्मृत बुझे मूल सुख में जाने स्थूल चौ वर्ण को दे उपदेश नानक उस पंडित कुछ दा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वर्ण में जपे को नाम जो जो जप जो जो जपे जिसकी गत हुए सा संपावे जन कोए

गले अश्परी जिसके अंतर राजमान सुनत पाती हो सुवान जो जान में जो नवंत सूत विष्टा का जंत आज को कर्मवंत कहावे जन्म रे भोजन प्रमावे तन भूम का जोकरे गुमान सुमूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नान की हां मुख्य आगे सुख पावे तनमंता होई कर गुरभावे तिन समान कर संग न जावे बहु लश्कर मानुख प्रक्रियास पल पितरता का होय विनाश सावते आप जने बलवंत किन में हो जाए पशुमंत किसन बदे आप अंकारी धर्मराज करे खुआरी गुरु प्रसाद जाका मिटे विमान सो जन अंतर गए प्रवान कोड कर्म करे हो तारे शरम पावे सगली बिर तारे अंत तपस्या करे अंकार नर स्वर्ग फिर फिर अवतार अंत जतन कर आत्मन दर वह हर दर के को कैसे कवे आप जो भला कहावे तसे भलाए निकट नावे सर्व की रिंजा कामन होए कहो नानता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कश होए तब इसको सुख नाही कोई जावे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे कुबेरी मीत तब लग ने चलना ही चीत जब लग मोह मगन सिंगमाई तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस खड़ेला कुड़ तावे तृथ न आवे माया पाछे पावे अनक भोग विख्या के करे निंद्रतावे खप खप मरे बिन संतोख नहीं को राजा सुपन नोट ब्रते सब काज नाम रंग सर्व सुख होए बुढ़ भागी किसे प्राप्त होए।

ठीक ठाक घर अनुशासन से सत्संग चरण चलो मारे गोबिंद मिटे पाव जपी हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथर दुर्गे नाम कूजन मथवड़ भागी ते जन जग माहे सरसदार के गुण गाहे।

करें। जैसा सत्य सदिष्टा अपने कार्य में आसुमाया, सुधत सुधत सुधत सीझिया, गुर प्रसाद तत् सब बुझिया। जब देखो तस कुछ मूल नाम सुसुखम सोय स्थूल, न किछ जन्मे न किछ मरे, अपन चलते आप ही करें। आवन जावन दृष्टन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट, आपे आप सकल में आप, थाप थाप अविनाशी, ना ही किश खंड, तारन तारो ब्रह्मांड, अलख पी पुरख प्रताप, आव जपायता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सुसुभा वंश, संसार उदृतन मंत, प्रभ के सेव सगल उदार, प्रभ के सेव दुख विसार, ने आपे मिले कृपाल, गुर का सज पह निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, सुनु कृपा करे बड़ भागे। नाम जपत पावे बिसराम, नानक तिन पुरख कहो तुम कर मान, जो किश करे सुप्रभ का रंग, सदा सदा वसार संग, सह सुभाय हो वैसो होए, करण हार पछाण सोए, प्रभ का गजन मिठल गाना, जैसा सत ऐसा दृष्टाना, जिस त्यो जिस समाए सुमाए सुख।

नाना चतक्रेखन माहे पूरे हो पूर से उठाई नाना बिद करवंत बनाए अपनी कीमते आपे पाई सब काट दसके सब दसके ठाओ जब जब जीवे नान करनाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगला आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग

रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत कीर प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समय सुमाणी सत कर्म मूल सत सत उत्पत सतकर्णी निर्मल निर्मली से बुझाए किसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत जंजा कृद प्रवेश सत नृत भूजा जे कोई नाम जपत ताकि गत हो आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसके सिर सुकर्ण हार और न बुझ करत विचार करते की मित ना जाने किया नाम जुद स्वभाव सुवर्त।

पर्दा ढक है अपने सेवक के सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक कहो नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रखे ताकि कदम ते कोई न लाके प्रभु के सेवक कहो को न पहुंचे।

नी की गिरी में कल राख भस्म ग्रह लश्कर कोट लाके इसका शासन काट दे आवता को राख दे कर हाथ मानस जतन करतब पात इसके करतब बिरते जात मारे न राख अवर न कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए पी मृत्यु मंथन त्रपिए नाम रतन दिन गुरु को पाया तिसके शबर नाही दृष्ट आया नाम धन नाम रूप रंग नाम सुखर नाम का संघ

राष्ट्रपति संत जनामिल करो विचार ईश्वर नाम आधार अवर पास अमित विसार चन गुमत में उतार हो कर्ण कारण सुप्र स्मरत दृढ़ कर गो नाम हर वत एहो तन संचो भगवंत संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे।

तू करे भली करनी सासु बा पजहर की सरनी अन क्यों पावी रोग न जाए रोग मटे हराव खदलाही सर्वधन में हर नाम दान जप नानक दर गए प्रवान मन प्रभु द्वार के नाई दे साव त्या बैठाई ताक बिघन लागे कोई जाकर दे बस हर सोई कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पवन सह पूर्ण होयास भगत पाए आत्म प्रगास जित कर जाए बसै अविनासी को नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म रह सुका चुका चाय आवागमन मिटे प्रभु शिव आप त्याग सन गुरुदेव अमृतन जन्म का हुए उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनक पावन छूटन हार सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की पकरो मन लाए मन पंचत नानक फल पाए संग न चाल स्थिर तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सोत मीत कुटुंबर बनता इन ते कहो हो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इन ते कहो हो कवन छुटकार

प्रथमते आवो चरण कमल सो लागे प्रीत भक्त रो प्रभ किनत नीत एको एको टेको आधार नानक मंगे ना प्रभ सार प्राभ की दृष्टि मा सुख होए हर सुपावे बिरला कोए जिन चाखे से जंत्र बताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सो पार भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध के संग परे सन्यान सब त्याग अंतर प्रकाश अंतन अंध लवलाग बड भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवकी मन सा पूरे भई सतगुर ते निर्मल मतलई जान को प्रभ होयो दयाल सेवकी नु सदा निहाल बंधन काट मुक जन पया जन्मन दुख भरम गया इच पुन्नी सरदा साब पूरी रव रहा सत्संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भगती नाम सुमाई सोक विसरै जे काल न पाने सोक विसरै जे किया जाने सोक विसरै जिन सब किश दिया सोक विसरै जे जीवन जिया सोक विसरै जगन में राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों विसरै जे विते काढ़ जन्म जन्म का टूटा गाढ़ गुरपुरै तते है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत कर होए हो काम आन त्याग जप हो हरना सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जपो अवर नाम जपाव हो भगत पाए त्रिया संसार बिन भगति तन हो सिचार सर्व कल्याण सुख निद नाम बुढ़ जात पाए विश्राम सगल दुखा होवत नास नानक नाम जप हो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रचाओ मंत्र त्रय सुआओ नेत्रोपेक दर्शक होए मन

जब आकार एहो कछ ना दृष्टिता पापन तब कहते होता जब तारी अपन सुन सुमाद तब बैर विरोध किस संकुमार जब इस काल बरन चेहन न जापत तब हर सुख किसे प्यात जब अपने आपा पार ब्रह्म तमुका किसोत परम आपन खेले आवृति जानान करने हारन दूजा जब होत प्रभ केवल तनी तब बंद मुद को किस

जय स्वरूप केवल जगदीश तय चरचित लगत को केस जय जो स्वरूपी जो संग समावै ते किसी भूकंप तृप्तावै करण करावन करण हार नानक ते कनाई समार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप जय जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई

जय कह एक भगवंता तै कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपने आप पतियारा तै कौन कथै कौन सुने हारा। बहु बेअंत उचते उचा नानक आपस को आप है पहुचा। जह आप रचियो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार। पापुन तै पई कहावत को नरको सुर्ग बिन शावत।

मात पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पिंतु दत्त श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख परदान जिस मन बसै सो होत निहाल।

दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी कहे है आधार।

तिन कै साथे सरन जोग सुनसरनी आए कर कृपा प्रवाह मिलाए मिट गए भैर भये सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भये गुरुदेव पूर्ण होई सेव की आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुनसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभ की स्तुति करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत

सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम, भक्त जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहो जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावे तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए वैण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माह कवन जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवे लेख पुराण वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख पुराण थेत वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई जा करता सर ठीक साजे आपे जाने सोई केव करे आखा केव सालाही क्यों वरने केव जाना नानक आखण सब को आख एक दो एक सियाणा वड़ा साहेब वड़ी नाई पीता जाका होवे नानक जी को आपो जाने अगे गया ना सो है पाताला पाताल लख आगासा आगास उड़क उड़क पाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कतेबा असुलू एक तात लिखा होए ता लिखी है लिख होए विनाश नानक वड़ा आखी है आपे जाने आप सलाही सलाहे एति सुरत न पाईया नदियां अतवाह पवह समुंद न जानिया है समुंद साह सुलतान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होगनी जेत समन होना भी सरा है अंत न सहती कहन न अंत अंत न करण देन न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापे प्या मन मंत अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कही है बहुता होए वड़ा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा हो वै कोय तेस ऊंचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता करम लिखिया ना जाए वड़ा दाता तिल ना तमाए केते मंगह जोद अपार केते अगणत नहीं विचार केते खप तुट है बेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केते दुख भूख साद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए होर आख ना सकै कोय जे को खाए को आखण पाए ओ जाने जीतिया मोहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे के ही के जिसनु बख से सिफत सलाह नानक पात साही पात साहो अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारिये अमूल भंडार अमूल आवह अमूल लै जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीबाण अमूल तुल अमूल परवान अमूल बखसीस अमूल निशान अमूल करम अमूल फुरमान अमूल अमूल आख्या न जाए आख आख रहे लेवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्याण आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तय गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करे ता आख ना सक है के ही के जेवड भावै तेवड होए नानक जाने साचा सोए जे को आख है बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर केहा सो कर केहा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे केते राग परी स्यों कहियन केते गावण हारे गावह तुहनो पाउण पाणी बैसंत्र गावह राजा धर्म दुआरे गावह चेत गुप्त लेख जाना है लेख लेख धर्म विचारे गावह ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इंदा सुन बैठे देवत्यां दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे
गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मान मोहन सुरगामा शुपयाले, गावन रतन उप

पाए तेरे आठ साठ तीरथ नाले। गावह जोद महाबल सूरा गावह खाणी चारे गावह खांड मंडल वर भंडा कर कर रखे थारे। सेई तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई। कर कर वेख है कीता आपना जीव ते सदी वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई। सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करहै बेपूत। खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वज है नाद। आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अबरा साध। संजोग विजोग दोए कार चलावै है लेखे आवह पाग। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवाण। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबाण। जिव तेस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमाण। ओ वेखै ओना नदर ना आवै बहुता एहो विडाण। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार। कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दूजी बहु लख होहि लख हो वह लख वीस। लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीस। इतराहे पत पवड़ियां चढ़िया होए इकीस। सुन गला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देण ना जोर। जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मन सोर। जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिती वार पवन पाणी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। करमे करमे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान। कच पकाई ओथै पाए नानक गाया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखा हो कर्म। केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश। केते बरमे घाट घड़िया है रूप रंग के वेस। केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस। केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद। केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद। केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़िय है बहुत अनूप। ताकियां गलां कथियां न जाहे जे को कहे पिछै पशुताए। तिथे घड़िय सूरत मात मान बुद्ध तिथे घड़िय सुरां सिद्धां की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर। तिथै जोद महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे। ना ओहे मरहै न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे।
तिथै भगत वसै केलो करहै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जीव जीव हुकम तिवै तिव कार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तापताओ भांडा पाओ अमृत तित टाल घड़िए शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अतीत हैं। त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, आगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंद है, निर्बूज है, सूज है, अकाल है, अजार है, अल्लाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नृसिक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है,

विश्वंपर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंड से हैं, खलखंड से हैं, परते पर हैं, करुणा कर हैं, अजपा जप हैं, अथपाथप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अमृता मृत हैं, करुणा कृत हैं, अकृता कृत हैं, धरणी त्रित हैं, अमतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, आकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अजबा कृत हैं, अमृता मृत हैं, निर्नायक हैं, खलकायक हैं, विश्वंबर हैं, करुणालय हैं, निर्पनायक हैं, सर्व पायक हैं, पापंजन हैं, अरगंजन हैं, रिपतापन हैं, जब जापन हैं,

एक श्री छंद अजय अलय अपय अभय अभू अजु अनास आकाश अगंज अपंज अलक अपक अकाल दयाल अलेख अपेक अनाम अकाम कहा टह नाथे प्रमाथे अजो नियमो नि नाग न रंग न रूप न रेखे कर्म परम गंजे अलेखे भुजन प्रयाद छंद नमास्त्र प्रणामे सुमात्र प्रणासी अगंजलो नामे सुमात्र नवासी नरकाम विभूते समान नरकाम विभूते निरकाम विभूते समात्र स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सुतर्म विभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करिमलकनंदा समात्र निवासी जय विभूते जय गनी में हरियं करी मुल रही में चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भाव शुभम सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं विभूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं विभूते। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी के फतेह पातशाही दसवीं तप्रसास वये श्रावग सोध समूह सिधान के देख प्रयोग कर जोग जते के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मद को न देखत प्राण पति के सरी भगवान की पाए कृपा हूं ते बने कृति के माते मतंग जरे जर संग।

त्याग जहां दान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार विचार सार की धार पिछैया तोरत देश मिलंद मवासन माते जान के मान मलैया गाड़े गड़ानक तोड़न हार सो बात नहीं चकचार रवैया साहिब श्री सब कुछ नायक जाच कने सेख दवैया दान देव फिनंदन साचिर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में तल में पल ही पल में सब थावत पेंगे पुन प्रतापन बाट जय तुन पापन के बपुंज कपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक च पेंगे मार विंद्र गजन गजिंद्र नरात तब जो त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद गदान अनेक सोमवर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पतंत फसे जन पास पेंगे जे नर सरी पत के प्रसह भक्ति नर फिर न दे तरेंगे कहा प्यो जो दो लोचन मूद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नहात फिर लिये सास समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो बास गयो बख्यान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साज कहो सुन लियो सवै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज तरयो सिर काहू न लिंगरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मैं कह पुशाको शीस नवायो को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब जाय सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं पुनराशस का काटा सीसा सरियसकेत जग के ईसा पौपन वृष गगन के भई सविन आन बधाई दई धन धन लोगन के राजा दुष्टंदा गरीब नवाजा अखल भवन के सृजन हारे दा जान मोले ओ बारे कव्यो बाज बेनती चौपई हमरे करो हाद रचा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मल है हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दुष्ट वै तुम काव हो आप हादे मोहि बचाव हो सुखी वसै मोरो परवारा सेव सिख सवै कर तारा मोर अच्छा निज कर दै करिय सा बैन को आसंगरिय पूर्ण होए हमारी आशा तुर भई की रह प्यासा तुम्हें शाड़ की अवरना ध्याऊ जो

आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया, सह सेती मन वजिया, वधाइया रागतन परिवार भरिया, सबद गावने आईया।

आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलव कटे ज्ञान जन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका सब सचे सवारिया कह नानको आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सोजन पावे पावे ता सोजन दे जिसनु होर क्या करे विचारिया एक परम फूले फिरे दैद सिख नाम ला सुवारिया गुरु प्रसादी मन प्या निर्मल जिन्ना भाणा पावे कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे आहो संत प्यारे हो आकत की करह कहानी अकत गेरी कित द्वारे पाईए तन मन धन सब सौ गुरु को हुक्म ने पाईए हुक्म नु गुरु की रागा वो सची बाणी कह नान सुनो संतो कथियो आकत कहानी ए मन चंचला चतुराई कने न पाया चतुराई न पाया कने तू सुनवन मेरिया ए माया मोहनी जिने तो भरम भुलाया माया त मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाया कुर्बान कीता तिसै बिठो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई कने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सस माले हुकटम तुझे देखदा चरै नाही तेरे नाले साथ तेरे चले नाही तिस नाल कुछ तलाइए ऐसा कम भूले ना की जज तंत पछोताइए सतगुरु का उपदेश सुन तू हो है तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तुस दसा सुमाले अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंत ना पाया किने तेरा अपना तू जाने जी है जन सब खेल तेरा क्या को आख बखाने आखेता वेख सब तू है जिन जग तो पाया कह नान तुसदा गम है तेरा अंत न पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते अमृत गुरते पाया पाया अमृत गुर कृपा की नी सच्चा मन वसाया जी अजंत सब तुदो पाए एक वेख परसने आया लभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप टुटा तिने अमृत गुरते पाया भगता की चाल निराली चालन राली भगता केरी बिख मार्ग चलना लाभ लो अंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना कन्यो तिके वालो निकी एत मार्ग जाना गुर प्रसाद जिने आप जार वासना सुमानी कह नाम चाल भगता जुगो जुग निराली जो तू चलाए ते चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जे तू चलाए ते वह चले जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावे

तारण गगन नव खंड में है, जोत सब रूपी रहे ओ पर पान मथरा काछ भेद नहीं, गुर अर्जन प्रताख हर। जेता सुमुंद सागर नीर भरिया, तेते औगुण हमारे, दया करो

जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे भाई कूड़ बोल बिक खाई पंडित दही बिलोई है भाई बिचो निकले तथ जल मथिए।

दैद सुबादो माए बिन गुर गाठ न छूटे भाई था के कर्म न कर्म तुम्हारे एहो जग भरम।

पोरी दर्शन दीज नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल पीना तीरी जा प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना चात्रक जीवत संतिया

जित कर्म सुख उपज भाई सो आत्म तत् बिचारी। गुरु सवारी संगत जी बहुत प्यार विच रोजाना दे नेमी प्रेमी हाजरी भर दियो दूर नेड़े गुरुद्वारा साहिब सब माई भाई गुरसिख प्यार सहत रसना पवित्र करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग पतत पावन दया सिंध कृपा निध गुरु गरीब निवाज जुग हो जुग अटल दसां पातशाहियां दी जगदी जोत साहिब आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। जेता शब्द सुरत तन तेती जेता रूप काया तेरी तू आपे रसना आपे बसना अवर न दूजा कह माई साहिब मेरा एको है भाई एको है साहिब आद गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान प्रेमी गुरसिख माई भाई समूह संगत गुरु की अपार अपार कृपा प्राप्त है। अमृत वेले तो बेअंती संगता ने सतगुरां दे दरबार दियां हाजरियां भरियां ने। सतगुरु जी दी रब्बी बाणी तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। वह तुर दरगाह दी बाणी है जो साडे अंदर दे फिकरां नूं चिंतावां नूं झोरियां नूं काढ़ियां नूं दूर करन वास्ते सतगुरु जी दी अमृत बाणी समर्थ है। कोई शंका नहीं है। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच वखाना। गुरु की अमृत बाणी सिख जदों पढ़दा है गुरु दी रहमत वरतदी है सतगुरु जी सदीव काल विखे सेवक दे अंग संग हो जांदे ने। इन्नी वड्डी रहमत कर जांदे ने सेवक नूं औखी घड़ी ना देखण दी। ये मेरे गुरु दा बिरद है। गुरु आप पात्र रख लैंदा है आप पढ़दे कज लैंदा है पर सतगुरां दे चरणा च अरदास है महाराज मेरा कोई बल नहीं है मेरा कोई जोर नहीं है तुसी आप ही डुबदे बेड़िया नूं बन्ने लाउण वास्ते समर्थ हो बल छुटकियो बंधन परे कशु न हो तो पाए कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। ता महाराज फिर कृपा करदे ने बल होवा बंधन छुटे सब किश होत उपाए नानक सब किश तुम रह हाथ में तुम ही होत सहाय। सब कुछ मेरे गुरु दे हाथ विच है प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जो करावे सो करना नानक दास तेरी सरना। पातशाह आप जी दी पावन बारगाह विच आए हां आप रहमत करो। सतगुरां दी अपार कृपा है अमृत वेले मुख वाक साहिब जिस वेले सतगुरु जी तख्तां ते प्रकाशमान हुंदे ने हुक्मनामा साहिब मुख वाक साहिब जी दी दात रोजाना आपां नूं प्राप्त हुंदी है। आसा जी की वार दे कीर्तन तो उपरंत रोजाना गुरु करदा नेम है फिर उस मुख वाक जी दी शब्द दी विचार हुंदी है। गुरु सवारी संगत जी अज दे अमृत बचन आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 635 अते 636 ते सतगुरां दा शब्द सुभाईमान है। गुरु सवारी संगत जी अज दे अमृत बचन पहले पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज जी दी मुबारक रसना तो दात प्राप्त होई है। सुरठ राग विच है अष्टपदियां दे रूप विच है तीन पदियां वाला शब्द है। धन गुरु नानक देव महाराज जी अपार अपार कृपा करदे ने। आओ सतगुरां दी ही बख्शिश द्वारे अज दे अमृत बचना नाल गुरु सवारी संगत जी सांझ पाउण दा जतन कर लईए।

खड़ोपाई कर्म करो संसारी पाखंड मैल ना चुकई पाई अंतर मैल विकारी इन बिद डूबी माकुरी पाई ऊंडी सिर कै पारी दुरमत घणी विगूती पाई दूजै पाए खुआई

साच सहज गुर ते उपजै भाई, मन निर्मल साच समाई। गुर सेवे सो बूझै भाई, गुर बिन मग ना पाई। जिस अंतर

हर कै दुख अंधेरा उठ गया। गुण जंज लाड़े नाल सुहै परख मोहनी ऐ लया। विवाह हुआ सो बसेती पंच सबदी आया। जिन किया तिन देखिया जगत।

मन लियड़ा दीता, लिया ता दिया मान जिन स्यों, से सज्जन क्यों विसरह, जिन तिस आया हो हे रलिया, जी सेती गहर है, सगल गुण अव

क्यों छलै पर पंच मोह बिकार थाके कूड़ कपट ना दोई मेरा मन राता गुण रवै मन

साहिब रंग राता सच की बाता, जिन बिंब का कोट उसारिया, पंच भू नायकु आप सिरंदा, जिन सच का पिंड सुवारिया, हम अवगण यारे तू सुन प्यारे तुद पा।

कर जोड़ गुर पह कर बिनंती, राहु पाधर गुर दसै मन पर देसी जेती है, सब देश पराया किस पै खोलों गंठड़ी।

हर प्रभ कृपा करे हर जापहु, सुख फल हर जन पावहु। नानक कहे सुनहु जन भाई, सुख सोहिलड़ा हर त्यावहु। सुन हर गुण पीने सहज सुपाई,

नानक से भगत हर कै दर साचे अन दिन नाम संभाले। मनमुख भगत करहै बिन सतगुर, बिन सतगुर भगत

अकाल पुरख ऐसा समुद्र है, सतगुरु दीन दयाल जिवें समुद्र विच रह के मछली अंत नहीं पा सकती, तू दरियाओ दाना बिना मैं मछली कैसे अंत ला। जह जह देखा तै तै तू तुझ ते निकसी फूट मर। इवें ही उस निरंकार दा आकार है। सतगुरु सच्चे पातशाह कह रहे ने वो हरदम हर पल सानू जीवन वास्ते कुछ ना कुछ बख्शिश करता है। जेडे कहंदे ने ना भई रब किथे है, 20-25 सेकंड लई अपनी नोज नू घुट के फड़ लो पता लग जाएगा श्वास देने वाला भी कोई है। वो साडे विच है, असी ओदे विच। उस तो बगैर कुछ है ही नहीं। सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। जे कोई बोलदा पिया है ना ओदे विच भी ओही बोलदा है। जे कोई देखदा पिया है ना ओदे विच भी ओही देखदा है। ओ गल वखरी है, किसी भी कमाई इड्डी महान हो जाए, जह जह देखा तै तै तू है। सतगुरु कह रहे ने फिर वो जिहड़ी अवस्था है, वो जिहड़ी स्टेज है, जा पदवी कह लो जा कमाई कह लो, किसे विरले भी बनती है। सतगुरु कह रहे ने उहदे गुणा की कोई गिणती नहीं, जिदे जिवें साडे अवगुणा की कोई गिणती नहीं, पर उहदे गुण गायन करन नाल अवगुणा का भी नाश हो जाता है, मिट जाते ने। सचे पातशाह तेरे तो बगैर कुछ भी नहीं, तेरे तो बगैर कोई भी नहीं। असि शरीर का ही मान करी जाते हैं, शरीर नू बॉडी नू अज तक किसी ने नहीं रखिया। ओदी अंश ओदी बख्शिश हुई, आत्मा ओदा हिस्सा कह लीए, वो कूच कर जाए तो सब कुछ मिट्टी बन जाता है। महाराज कह रहे ने मेरे साहिबा तेरे चोज बिना, ये सब तेरी लीला है, पर इनू समझदा कोई है नहीं। ते बंदा कुछ होर समझण वास्ते आया सी, पर समझे कुछ होर जाता।

पावन जुरी बच्चे दोने बच्चे सुभाईमान सतगुरु जी हजूरी बच्चे सच चुके हैं जी। सो परिवार हुक्म होया सी कि जा तू मेरे वल है ता क्या मौसम दा तेरे सब कुछ मेरे सौंपे आ जा तेरा बंदा